0: जो सास गिरास त्याए मेरा हर हर सोबर से गुरु मन पावे
1: जिसनु दयाल होए मेरा स्वामी
0: तिस गुर सिख गुर उपदेश सुनावे तिस गुर सिख गुर उपदेश सुनावे
1: जन नानक तू मन

स्तुति बकता करके जुग कोट गणेश के हाथ लखे हूँ, जुग कोट गणेश के हाथ लखे हूँ, का कृपा

मैं ते परम गति सब तो उच्ची अवस्था अकाल पुरख वाहिगुरु नु मिलन दी जो है उपाय है, किस तरह? साध संगत दे द्वारा। सो साध संगत ही वो टंग है, साध संगत ही वो विधि है, साध संगत ही वो रस्ता है जिस दे द्वारा प्राणा दा नाथ प्यारा वाहिगुरु मिलता है। अगलियां पंक्तियां दे विच भगत गुरदास जी ये दसणगे कि साध संगत उन्होंने किवें कीती।

कहते हैं मैं परम गति पाले ही, सब तो उच्ची आत्मक अवस्था अकाल पुरख वाहिगुरु दे मिलाप दी पाले ही है। भक्त रविदास जी दस जहन के मेनू ते सात संगत दे द्वारा ही प्राप्त हुई, बाकी दे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच वी इस आईडिया नू इस तरह सपोर्ट करते हैं, इस दे नाल सहमत हैं, इस दे नाल इकमिक हैं, अते ताकीद करते हैं कि इंसान ए जिज्ञासु ए सीकर जे तू उस अकाल पुरख वाहिगुरु नू ढूंढना मिलना चाहना है जो कि तेरी जिंदगी का निशाना है, तो सात संगत तो अलावा होर दूसरा कोई रस्ता नहीं। महाराज जी बाणी च इस तरह आखते हैं, कहते हैं

बहुत कमाल की गल बाबा जी बाणी चाहते हैं कि जो साधुओं का संघ है वो सिर्फ इत्थे ही काम नहीं आता, किसी होर दुनिया च भी काम आता। बाणी का प्रमाण सुनो, कहते हैं

साधु मित्र हन जिन्होंने ढूंढ सज्जन संत पक्के हैं, जिन्होंने पक्के हुए आत्मक जीवन दे विच प्रपक्ष साधुओं दे नाल अपनी मित्रता पाई है, कहिंदे हन इह जिहड़े कच्चे हन इन्होंने ते इत्थे ही छड़ जाना है। कहिंदे हन तुहाडी रूह नूं ओह खुआर नहीं होण दिंदे, तुहाडी रूह नूं भटकण नहीं दिंदे, साधु संत दोनों जहाना दे विच तुहाडी जो है वह संभाल करते हैं। इस करके साध संगत नालों वड़ा होर कोई टंग ही नहीं है भक्ति का। इस करके होर सारिया विधियां जड़िया हैं वह साध संगत के मुकाबले दे विच कुछ नहीं हैं। प्रेम नाल गाओ।

बहुत प्यारे वचन हैं। ये शब्द इतना इतनी परफॉर्मनेस के नाल भरिया पिया है कि असी इसनू अपनी जिंदगी अगर कमा लईए, इसनू वरत लईए, तो साडा जीवन भगत रविदास जी की तरह बदल सकता है। भगत रविदास जी कहते हैं, फिर मैं की कीता, जोई जोई जोरियो सोई सोई फट। जो भी अपने अंदर सुभा जोड़े हुए सन, सुभा पकाए हुए सन, इन्वेस्टेड हैबिट्स सन, कहिंदे उसनू मैं सारे नू सारे नू एक कचरा समझ के पाड़ दिता। जोई जोई जोरियो, असी कई दफा एक दफा किसी नाल नाराज हुंदे हां, फिर उसनू असी अपने अंदर जोड़ लेने हां, उस नाराजगी फिर सारी उम्र रखते हैं। किसी ने अगर सानू कोई बुरा शब्द किसी वेले कह दिता है, वह फिर सानू सारी जिंदगी याद रहिंदा है। जो भी उस परसन नू असी देखते हाँ, उस रेफरेंस दे विचों देखते हैं, उसे रेफरेंस दे विचों देखते हैं। मेरे नाल किसी ने बुरा किया है, उसनू असी भुला नहीं सकते। कहिंदे जोई जोई जो रहे हो, अगर 10 साल पहला किसी इंसान ने कोई गलत काम किया है, वह सुधर भी जाए, तो साड़ियां निगाहां दे विच जदों असी उसनू मिलांगे देखांगे, तो असी यह कहांगे सानू पता है 10 साल पहला किदां दा हुंदा सी। दिस इज अवर नॉर्मल बिहेवियर। 10-15 साल पहला अगर किसी इंसान का जीवन किसी होर किस्म का सी, जो कि बहुता एक्सेप्टेबल नहीं सी, लेकिन वो इंसान अपना जीवन बदल लेता है। उसने तो जीवन बदल लिया है, लेकिन लोगों ने ओपीनियन नहीं बदली अपनी। लोग उसनू यही कहते हैं कि जानते हैं असं इसनू 10 साल पहला की करता हूं। इसनू क्रेडिट दो, उसनू शाबाश दो कि इसने अपना जीवन 10 साल के कितने का कितने ले आता है, बदल लिया है, ना कि तुसी उसे नू ही देखना है। बाणी दे विच एक साड़ी जो अवस्था है, साड़ी जो आदत है, उसके प्रति बहुत खूबसूरत लाइन महाराज ने दर्ज की है। कहते हैं, माखी चंदन पर हरे जह बिगंग तह जाए, माखी चंदन पर हरे जह बिगंद तह जाए। जड़ी मक्खी है वह चंदन ते नहीं बैठती, उन्हों त्याग दिंदी है। जह बिगंद जिथे गंदगी है उथे जाके बैठती, उथे जाके बैठती। तो असी भी अपने जीवन दे विच किसी की खूबसूरती नू, किसी दे शुभ गुण नू जदों देखते हां, ते नाल दी नाल कोई उहदा कोई ना कोई अवगण जां कोई उसका पिछला कर्म जरूर देखने की कोशिश करते हैं। भगत जी कहते हैं, मेरिया निगाहां च मैं अपने अंदरों जो भी जोड़िया सी कहते सब पाड़ के रख दिता। अगर किसी नाल नहीं सी बनती तो उसनू जाके आप बुला ले। कोई अगर मैनू मैला लगता सी तो उसनू आख्या गले लगा के, भाई तू ही मैला नहीं, मैं तेतों भी खुद ज्यादा मैला। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाटो। जेड़े गलत सुभा पक चुके सन, आलस का सुभा गलत है, निंदा का सुभा गलत है, चुगली का सुभा गलत है, होमे का सुभा गलत है, उच्चा बोलन का सुभा गलत है, कौड़ा बोलन का सुभा गलत है, ये सारे पक्के हुए सन। कहते वो सारे दे सारे मैं, दिस वॉज द सैकेंड इफेक्ट ऑफ द साध संगत। कहते मैं ये सारे दे सारे फौरन पाड़ सिटे, डिले नहीं किए। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाट्यो, झूठे बंज उठ ही गई हाट्यो। वह कहते जी झूठ की दुकान खोली उसी मैं, वह उठ ही गई है, खत्म ही हो गई। अखीरली लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही अर्थपूर्ण है, जिस दे विच भगत रविदास जी आखते हैं, पहला उसनू सुनो फिर उसका असी अर्थ करांगे।

अपने चारों राम को मेरा कांटा लाते जाए रे, हम अपने चारों राम को हम अपने

0: हर हर नाम निदान है, गुरमुख पाया जाए तन मन शीतल हो,
1: शीतल हो
0: हर हर नाम निदान है।

सलल निवास जैसे मीन की ना घटे रुच, दीप कपरदास कटे प्रीत ना पतंग की उस समास, जैसे त्रिपत ना मध्यप को उड़ते आकाश, आस कटे ना विहंग की कटाकन को।

अंतर आत्मा दे नाल हुण मैं परमात्मा दे पिछे इंज लग पई आ जिवे कोई ढोल वजा के निशान लैके उस दे मगर पैंदे। इसे तरह मैं उस निरंकार दे पिछे हुण ओदे नाल मिल पई आ। मिलो गोपाल निशान बजाई, मैं दुनिया दी उस्तत निंदा तो उठ के दुनिया दी प्रवाह ना कर दी होई उस दे मगर लग पई आ। हुण मैनू ओ दाता मिल पिया, मैनू किसे दी प्रवाह नहीं। भगत जी कहंदे ने

श्री गुरु गोविंद सिंह कर करना पाए भले मग चारो वरना जेड़ा सिख अपने गुरु का शुकराना अदा नहीं करता भाई साहब आखते ने उस वर्गा नीच ते अकृत कण दुनिया ते नहीं मिलेगा। कलगीधर पातशाह जी ने तैनू कीड़े तो पातशाह बनाया किन्ने उपकार हन तेरे उत्ते ऐ गुरसिख कदी तू कलगीधर पातशाह जी का शुकराना अदा किया है। अज गुरु रामदास अपने गुरु का शुकराना अदा कर रहे हैं अपने आप नू कीड़ा दस रहे हैं तू कितना कुछ शुकराना अदा करने है। हजूर आखदे ने भाई साहब भाई संतोख सिंह जी श्री

क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा, जिन प्रीत लाई सो जानता, हमरे मन चित हर बहुत प्यारा। हो बुल बलहारी गुर आपने, जिन विछड़िया मेलिया मेरा सृजनहारा। मेरे राम हम पापी शरण परे हर द्वार, मत निर्गुण हम मेले कबहू अपनी कृपा धार। हमरे अवगुण बहुत बहुत है, बह बार बार हर गणत न आवे। तू गुणवंता हर हर दयाल, हर आपे बख्श ले हर भावे। हम अपराधी राखे गुरु संगति,

हम जैसे अपराधी अगर कोई राखे, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ा। तू गुरु पिता, तू है गुरु माता, तू गुरु

से प्राप्त नाशवंत पदार्था न प्यार में पीता अमर वस्तु जो सी धर्म उसन अपना जिद को धर्म है वे को सब धर्म ही सब तू वी का जिद को धर्म है भाई उसका जीवन सदा वास्ते खत्म धर्म धर्म नाल प्यार इस नाशवंत शरीर नु कुर्बान कर समझिया इसने तो बिन सुना इसने तो एक दिन बिन सी जाना है तो धर्म संगीत धर्म नाल प्यार शुभ गुणा नु ग्रहण किया जो कलगी दर्श के पातशाह जी ने मंग मंगी है फिर बाबा जोरावर सिंह से बाबा फतेह इस तरह शुभ गुणा नु ग्रहण कर दे सब तो वड्डा शुभ गुण सब तो वड्डा कर्म हजूर प्रमोदन सगल धर्म में श्रेष्ठ कर्म हर को नाम जप निर्मल हरि दे नाम नाल प्यार कीता सिमरन नाल प्यार कीता धर्म नु उच्चा ते सुचा रखे तो आओ प्यारी साथ अज पुनः महान पवित्र हस्तियां महान व्यक्तियों की याद जुड़े आओ जो दात मेरे साई ने मंगी है आओ आपा भी मंगी आपा किस तो मंगीए अपने गुरु तो मंगी आखो श्री वाह असी गुरु अगे झोलिए क्योंकि साडा इष्ट कलगियां वाला असी कलगियां वाले दे सिख ओ साडा गुरु गुर परमेश्वर को जा पानी चाहे गुरु ते परमेश्वर फर्क कोई नहीं पर अपने इष्ट दे अगे अरदास करिए ते ए मंग मंगी केड़ी जो कलगी दर्श के पातशाह जी ने अकाल पुरख की अरदास की पहले से बोले पिछले सारी संगत